0: Radio 2000 98.5 FM Community Program
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2000 98.5 FM।
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: मैं रंजना रमन रेडियो दर्पण के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं. आइए सुनते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के आज की महत्वपूर्ण खबरें. आज यानी 19 जुलाई 2026 रविवार, युगा 5128 विक्रम संवत 2083 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है. सबसे पहले सुनते हैं भारत से खबरें. नीट परीक्षा अनियमितताओं पर बड़ा आंदोलन, सोनम वांगचुक का 19 दिन का अनशन. पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लगातार 13वें दिन अनशन पर रहे और उनका वजन 9 किलो से अधिक कम हो गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि उनकी दैनिक मेडिकल मॉनिटरिंग की जाए. कांग्रेस जनता पार्टी CJP और कई छात्र संगठन नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की गड़बड़ियों के खिलाफ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. तीसरी भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BV नाग रत्ना ने कहा कि कक्षा 9 में तीसरी भाषा जोड़ना बंद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले यह बच्चों पर अत्यधिक बोझ डालता है. यह टिप्पणी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ हिस्सों पर पुनर्विचार की मांग को तेज करती है. ED की देश भर में छापेमारी, आतंक फंडिंग और अवैध घुसपैठ केस. प्रवर्तन निदेशालय ने 5 राज्यों के 13 ठिकानों पर छापे मारे. मामला आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़ा है. जांच एजेंसियां ने कई डिजिटल और वित्तीय दस्तावेजों को जब्त किए हैं. भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च, रेलवे में बड़ा बदलाव. प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. यह ट्रेन हरियाणा के जिंद सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की दूरी में चलेगी. भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है जो ग्रीन हाइड्रोजन रेल तकनीक पर काम कर रहे हैं. अमेरिका के नए वीजा नियमों पर भारत का बयान. ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, पत्रकारों, सांस्कृतिक एक्सचेंज विजिटर्स के लिए वीजा अवधि को निश्चित अवधि में बदलने की नियम जारी किए हैं. भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इमिग्रेशन किसी भी देश के संप्रभु अधिकार में से आता है, लेकिन भारतीय छात्रों और यात्रियों की समस्याओं को अमेरिका के साथ उठाया जाएगा. राम मंदिर दान चोरी मामला, SIT को विस्तार, RSS की सख्त प्रतिक्रिया. राम मंदिर दान चोरी मामले में पुलिस ने एक आरोपी के घर से राम राज्य कोष लिखा दान बॉक्स बरामद किया. SIT को 15 दिन का और समय मिला है. RSS ने पहली बार बयान देकर कहा कि दोषियों की को कड़ी सजा मिलनी चाहिए. इसरो में वैज्ञानिकों के इस्तीफे बढ़े. सरकार ने मेमो जारी किया. इसरो के लगभग 100 वैज्ञानिक और इंजीनियर विभिन्न केंद्रों से इस्तीफा दे चुके हैं. यह स्थिति गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण मिशनों को प्रभावित कर सकती है. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने वैज्ञानिकों के पलायन को रोकने के लिए विशेष मेमो जारी किया है. आइए अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की खबरें. BHP की ऐतिहासिक हड़ताल, 25 साल में सबसे बड़ा औद्योगिक आंदोलन. पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हैंडलैंड में BHP के खिलाफ बड़ी औद्योगिक हड़ताल हुई. लगभग 100 यूनियन सदस्य और समर्थक साइट के बाहर जुड़े. इसे 25 वर्षों में सबसे बड़ा खनन औद्योगिक आंदोलन बताया गया है. हड़ताल के बावजूद जहाजों की लैंडिंग जारी रही, लेकिन यूनियनों ने अनुमान लगाया था कि इससे BHP को $50 मिलियन का नुकसान हो सकता है. पिलबरा में बिजली ग्रिड कर्मचारी भी हड़ताल के पक्ष में. इलेक्ट्रिकल ट्रेड यूनियन ने बताया कि BHP के हाई वोल्टेज ग्रिड पर काम करने वाले कर्मचारी काम बंद करने के पक्ष में भारी संख्या में वोट कर चुके हैं. कर्मचारी बेहतर कार्य शर्तें और प्रमोशन के स्पष्ट मानदंड की मांग कर रहे हैं. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पुलिस का बड़ा अलर्ट. बैक पेपर और छात्रों की मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम से सावधान रहने की अपील. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पुलिस और क्राइम स्टॉपर्स ने चेतावनी दी है कि अपराधी फर्जी जॉब ऑफर और सोशल मीडिया संदेशों के जरिए लोगों को अपने बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए फंसा रहे हैं। पिछले एक साल में 13,000 संदिग्ध बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं। दक्षिण पश्चिम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एंटी साइकोटिक दवाओं की कमी, एक मौत की जांच में बड़ा खुलासा। एक कोरोनियल इंक्वेस्ट में पता चला कि एक सिज़ोफ्रेनिया मरीज को उसकी नियमित दवा ओलेंजापाइन नहीं मिल सकी क्योंकि देश भर में इसकी कमी थी। दवा की कमी का कारण वेट लॉस ड्रग्स की बढ़ती मांग से जुड़ा बताया गया है। मरीज की 8 महीने बाद संदिग्ध ओवरडोज से मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया भारत रक्षा सहयोग में बड़ा विस्तार। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को गहरा करने की सहमति जताई। दोनों देशों ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन जारी किया और ज्वाइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी रोडमैप को मंजूरी दी। चीन द्वारा 55% बीफ टैरिफ, ऑस्ट्रेलियाई किसानों पर बड़ा आर्थिक झटका। चीन ने 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलियाई बीफ पर 55% आयात शुल्क लगा दिया। इससे ऑस्ट्रेलिया के बीफ निर्यात में 1/3 तक गिरावट की आशंका है। सरकार ने चिंता कम करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष ने इसे किसानों के लिए गंभीर खतरा बताया है। बॉन्डाई बीच आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर रॉयल कमीशन की मांग तेज। 14 दिसंबर के बॉन्डाई बीच हमले के बाद सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा की घोषणा की। व्यापारिक और धार्मिक संगठनों ने फेडरल और रॉयल कमीशन की मांग की है ताकि बढ़ते सामाजिक तनाव और सुरक्षा खामियों की गहराई से जांच हो सके। यह मुद्दा इस सप्ताह मीडिया में सबसे अधिक बहस का विषय रहा। आइए देखते हैं दुनिया की मुख्य खबरें। अमेरिका ईरान संघर्ष फिर से भड़का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले, वैश्विक तेल आपूर्ति खतरे में। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाजों पर हमले हुए। लगभग 6,000 नाविक सैकड़ों जहाजों में फंसे हुए हैं जिससे वैश्विक शिपिंग लगभग ठप है। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के हमलों की निंदा की है और देशों से इस मार्ग से बचने की अपील की है। तेल की कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ी लेकिन फिर $77 प्रति बैरल के आसपास स्थिर हो गई। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमनेई का अंतिम संस्कार, लाखों लोग सड़कों पर, संघर्ष और तेज। 9 जुलाई को ईरान में ने अपने मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई को दफनाया। 1.5 करोड़ से अधिक लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। दफन से कुछ घंटे पहले ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए। तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक उछली और वैश्विक महंगाई पर असर पड़ा। अफ्रीका में इबोला का सबसे तेज फैलने वाला प्रकोप, 40 दिनों में 1,000 से ज्यादा केस। कांगो में इबोला का 2026 का प्रकोप इतिहास का सबसे तेज फैलने वाला माना जा रहा है। 40 दिनों में 1,000 से अधिक केस दर्ज हुए। यह अब तक की सबसे तेज वृद्धि है। कुल केस 2,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के स्तर का खतरा बताया है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 1972 के बाद पहली बार मानव चंद्रमा के पास पहुंचे। आर्टेमिस 2 मिशन ने 7 घंटे का ऐतिहासिक चंद्र फ्लाईबाय पूरा किया। यह 1972 के अपोलो 17 के बाद मानव का चंद्रमा के पास पहला मिशन है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से दूरी का नया रिकॉर्ड बनाया। स्पेस एक्स का ऐतिहासिक IPO, एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनर बने। स्पेस एक्स के IPO ने इतिहास रच दिया। कंपनी का मूल्यांकन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। एलन मस्क आधिकारिक रूप से दुनिया के पहले ट्रिलियनर घोषित हुए। यह वैश्विक टेक और स्पेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। यूक्रेन रूस युद्ध। यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर बड़े हमले किए। यूक्रेन ने काला सागर में रूसी सैन्य जहाजों पर सफल हमले किए। यह रूस की नौसैनिक क्षमता को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। नाटो देशों ने यूक्रेन को अतिरिक्त समुद्री सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। ग्लोबल हीट वेव और जलवायु संकट, कई देशों में रिकॉर्ड तापमान। जुलाई 2026 में दुनिया के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई। मध्य पूर्व यूरोप और अमेरिका में तापमान ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक गर्मी अब एक नया सामान्य बन गया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। सुनते रहिए दर्पण रेडियो। धन्यवाद।
3: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 MHz पर। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारी वार्ताएं, गीत, और हमारा आज का थीम होगा, शैलजा जी बताइए हमारे थीम को।
4: पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज जी के विषय में बात करेंगे, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 19 जुलाई को 2018 में उनका देहावसान हुआ था।
3: तो आज हमारे साथ शैलजा जी तो हैं ही, हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी भी हैं और आशिमा जी भी बहुत दिनों के बाद आई हैं। तो आशिमा जी ने सोचा कि चलिए नीरज की कुछ श्रद्धांजलि देते हुए हम एक कविता पाठ तो जरूर करेंगे, लेकिन हमारे साथ साथ एक हमारे गेस्ट भी हैं
4: जी। हाँ।
3: हमारी मेहमान हैं
4: विजेंदर
3: दुग्गल जी,
4: आशा की वो ओरिजिनल फाउंडेशन प्रेसिडेंट हैं।
3: अच्छा, उन्हें एक पुरस्कृत भी किया गया है रिसेंटली, उन्हें सिडनी में, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो।
4: बिल्कुल।
3: और उन्होंने बड़ी समाज सेवा की है, स्पेशली सीनियर्स की। तो हम वो आएंगी तो हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने कैसे सोचा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को रखना चाहिए, आपको यहाँ के सिस्टम में क्या कमी दिखाई दी या क्या अच्छा लगा, कैसा है, क्या है उनके बारे में, और जानना चाहेंगे कि भाई वो कहाँ से हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास हमारे जो रंजना जी ने बहुत सारी मेहनत करती हैं, उन्होंने एक वार्ता भेजी है मोदी जी के विज़िट के बारे में, जो अभी विदेशों में गए थे वो। इसके अलावा हमारी सरिता जी हैं, वो भारत में हैं, लेकिन उन्होंने दो दो वार्ताएं भेजी हैं। एक तो है राम मंदिर के बारे में, जो अभी वहाँ चोरी हुई है। और साथ साथ हम एक बहुत स्पेशल बात आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, इस साल अभी अगले महीने शायद सेंसस होने वाला है। सेंसस होगा, नया सेंसस है। इसमें अफसोस की बात यह है कि वहाँ 7-8 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं कि आप उनको टिक कर सकते हैं, लेकिन उनके नीचे लाइनें भी दी हुई हैं कि अगर आपकी आप कोई और भाषा घर पर बोलते हैं तो उसे उस पर लिख दीजिए। लेकिन हमें अपने पंजाबी श्रोताओं को बधाई देनी है कि उनकी एक पंजाबी, भारत की एक ही भाषा उस लिस्ट में है जो कि पंजाबी है। तो हमें एक्चुअली पंजाबी लोगों से कुछ सीखना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा भी उसमें कैसे आए, हालांकि हम पंजाबी को हिंदी से अलग नहीं समझते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जब आप सेंसस में भाग लें तो आपकी चाहे भाषा पंजाबी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, अगर आप हिंदी बोलना जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो उसे ज़रूर उसमें लिखिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब हिंदी का जो स्टेटस है वो सबसे नीचे चला जाता है।
3: बिल्कुल। और देखिए, ऐसा है कि किसी भी भाषा को वो कितने लोग उसे बोलते हैं उसके हिसाब से उसमें फंडिंग की जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करिए।
4: बिल्कुल।
3: और हम आपकी सहायता करेंगे।
4: बिल्कुल।
3: तो हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा तो हम एक, हाँ, एक कहानी है जो मैंने लिखी है, मैं कुछ थोड़ी सी अलग सी है, आशा है आपको पसंद आएगी, वो भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं।
4: प्रदीप जी, मैं कुछ कहना चाहूँगी कि श्रोताओं, आज मैं विशेष रूप से स्वागत कर रही हूँ आशिमा जी का, क्योंकि बड़ी मिन्नतों से वो आई हैं इस कार्यक्रम में। वो भी नीरज जी की फैन हैं, तो वो नीरज जी की कुछ कविताएं सुनाएंगी।
5: आप बुलाए तो, हम ना आए
4: तो आपका स्वागत है आशिमा जी।
5: थैंक यू।
3: तो इसी के साथ सुनते हैं आज का विचार।
2: श्रोताओं, मैं रंजना रमन लेकर आई हूँ आपके लिए आज का विचार। आज का विचार भारत के महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा पर एक प्रेरक उद्धरण है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में ज्ञान और विवेक का विकास करना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मानते थे कि शिक्षा सिर्फ जानकारी भरने का काम नहीं करती। शिक्षा का असली लक्ष्य है सोचने की क्षमता, सही गलत का विवेक और जीवन को समझाने की शक्ति देना। यह विचार हर उम्र के विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक है। धन्यवाद।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और सांस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomkare.org.au। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं नीरज जी के बारे में, गोपालदास नीरज जी के बारे में कुछ बातें। शैलजा जी,
2: श्रोताओं, जैसे कि हमने आपको पहले कहा बताया था कि आज का विशेष कार्यक्रम पद्म विभूषण श्री गोपालदास नीरज जी पर आधारित है, जिनकी पुण्यतिथि 19 जुलाई यानी कि आज के दिन है। उन्होंने 2018 में 19 जुलाई को अपना शरीर छोड़ा था। तो हमारे व्यक्तित्व को तराशने में जिन मुख्य अनुभवों का योगदान होता है, उसमें कविता और कहानी का एक विशेष स्थान है। नीरज जी की कविताओं ने 8 दशकों तक अनगिनत हृदयों को लुभाया है। आप में से श्रोता बहुत ऐसे होंगे श्रोतागण जिन्होंने नीरज जी का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम कारवां गुजर गया तो सुना होगा। मानव प्रेम के अनंतमय गायक गोपालदास नीरज पद्म विभूषण जी, उनकी कविता साहित्य की प्राथमिक विधा रही है। इस युग की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य चेतना को गतिमान करने में नीरज जी की कविताओं का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। देश के जनमानस को जागृत करने में नीरज जी का नाम उल्लेखनीय रहेगा सदा। उनकी कविताएं तत्कालीन नहीं, मनुष्य जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। अपने हृदय के उच्छ्वासों को शब्दों में समेटने की लयवंती सहजता के मधुर स्पर्श में नीरज जी बेमिसाल हैं। मैं ही नहीं सभा में तेरी अनगिनत कंठों का जमघट है, मैं ही नहीं सभा में तेरी अनगिनत कंठों का जमघट है, फिर मुझसे ही बार बार क्यों तेरा ये गाने का हट है। आसावरी समाप्त करूं तो दीपक का आग्रह हो तेरा, आसावरी समाप्त करूं तो दीपक का आग्रह हो तेरा। सचमुच गायक की मिठास गायक के लिए, सचमुच मधुबन की मिसाल गायक के लिए एक संकट है।
1: शैलजा जी, एक बात कहूं, आपको कंठस्थ है ये कविता और लगता है कि आप नीरज जी की बहुत बड़ी फैन हैं शुरू से ही।
2: तो बिल्कुल, क्योंकि 1960 में धर्मयुग में, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा धर्मयुग क्या होता है। धर्मयुग अब तो नहीं चलता है, लेकिन पहले
1: हमारे घर में आता था।
2: बिल्कुल, तो 1960 में धर्मयुग में प्रकाशित कारवां गुजर गया, जिसमें मुझे ही नहीं हिंदी जगत को एक सशक्त कवि का परिचय दिया था। तहलका मच गया था भारत में उनकी इस उस वक्त हमारे कॉलेज में सारे जगह कारवां गुजर गया क्या ही शोर हुआ करता था। अच्छा। 1960 में।
1: तो इसी बात पर
2: अब आप
1: गीत सुना दीजिए।
2: बिल्कुल, आप सुनाइए भाई, क्योंकि उसी कारवां गुजर गया कविता से ही नीरज जी अमर हो गए थे।

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian-made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. और दोस्तों, अभी आशिमा जी एक नीरज जी की कविता पढ़ने जा रही हैं. आशिमा जी.
2: छिप छिप अशुभ बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता.
3: बिल्कुल बिल्कुल.
2: सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आग का पानी, और टूटना है उसका जो जाके कच्ची नींद जवानी. गीली उंग बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता.
3: वाह, क्या कहना. सावन नहीं मरा करता है.
1: कितना गहरा इनके विचार हैं.
3: कितना सुंदर लिखते हैं.
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. शैलजा जी, अब बताइए थोड़ा
3: और आगे पढ़िए इसके आगे. जो ये तो बहुत सुंदर कविता है.
2: बस अभी मैंने मेन यही पढ़ा है. अब आप बताइए.
3: तो श्रोताओं, मेरा जो व्यक्तिगत संबंध था नीरज जी से, तो मेरा परिचय उनसे हुआ था 1963 में. उस वक्त कारवां गुजर गया था, उसका ऐसा शोर मचा हुआ था. तो हमारे कॉलेज में उनको कवि सम्मेलन में की अध्यक्षता के लिए इनवाइट किया गया था. तो उस फिर उस समय से किसी न किसी रूप में मेरा उनसे संपर्क रहता रहा. व्यक्तिगत रूप में मुझे लगा कि नीरज जी एक बहुत ही प्रभावशाली, संवेदनशील, सुलझे हुए ज्ञानी व दार्शनिक थे. हालांकि उनके बारे में बहुत सारी बातें भी कही जाती हैं उनके फेवर में, उनके अगेंस्ट में, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत संवेदनशील थे, जिसमें उनमें शिशु की जैसी सरलता, चरित्र की एक निश्चितता व आत्मा की विशालता झलकती है, जैसे उनकी कविताओं में पता लगता है. उनकी युवकोचित भावुकता बड़ी सहजता से उन्हें प्रेमी का रूप दे दे देती है. मधुपुर के घनश्याम अगर कुछ पूछे हाल दुखी गोकुल का, मधुपुर के घनश्याम अगर कुछ पूछे हाल दुखी गोकुल सा, उनसे कहना पथिक कि उनकी अब तक उनकी याद हमें आती है. बालापन की प्रीत भुलाकर वो तो हुए महल के वासी, बालापन की प्रीत भुलाकर वो तो हुए महल के वासी, जपते उनका नाम यहाँ हम यौवन में बनकर सन्यासी. कितनी सुंदर उनके भाव थे.
2: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर.
1: जो स्टाइल है कहने का, और आपको ये कविता भी कंटस्ट है, ये हमें कुछ दर्शाता है कि आप कितनी बड़ी फैन रही है.
3: नीरज जी की लोकप्रियता का कारण उनका सरस कंठ ही नहीं, उनकी मर्म स्पर्शी काव्यानुभूति, प्रवाहपूर्ण शैली व सहज सरल भाषा है, जिसने मानव के संवेदनशील हृदय की सरस व सरल अनुभूति के दर्शन होते हैं. उन्होंने श्रृंगार रस ही नहीं, अपनी विद्रोहपूर्ण वाणी में युग युग से तड़पती कसकती मानवता की करुण सजग पुकार को शक्तिशाली शब्दों में बांधा है. उन्होंने पाकिस्तान के लिए, उन्होंने कई सारे पत्र लिखे थे. एक पत्र अच्छा. था उनको पाकिस्तान के नाम.
1: अच्छा.
3: तो वो जो था कि बम जिसमें बंद है सिंदूर हर क्वारी दुल्हन का, बम जिसमें बंद है सिंदूर हर क्वारी दुल्हन का, हो रहा है जर्द उससे हुस्न मरियम की बहन का. नग्न संगीतें टंगी जिन पर की बेपर्दा जवानी, नग्न संगीतें टगी जिन पर की बेपर्दा जवानी, कब्र अकबर की फटी है याद कर उनकी कहानी. प्यार जिसको छोड़,
1: चलिए चलिए पढ़िए.
3: प्यार जिसको छोड़ दुनिया में कहीं भी दिन नहीं है, प्यार जिसको छोड़ दुनिया में कहीं भी दिन नहीं है, वह मरे और शायरी रोए ना, ये मुमकिन नहीं है.
1: बहुत बढ़िया शैलजा जी.
3: मैं न लिखता खत तुझे लेकिन रहा जाता नहीं है, मैं न लिखता खत मगर मुझसे रहा जाता नहीं है, दर्द ऐसा है कहूँ भी तो सहा जाता नहीं है। तो ये उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखा था, लंबी कविता थी।
1: अच्छा, एक्चुअली आपके पास तो उनकी कविताओं का बहुत बड़ा भंडार है। आप कितनी चार किताबें लाई हैं उनकी, और ये है कि इनमें से काफ़ी कविताएं आपको कंठस्थ हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, हमारे मेहमान अभी नहीं आई हैं
3: जी,
1: तो हम एक
3: नीरज जी का गीत सुना दीजिए।
1: नीरज जी का गीत सुनाने से पहले हम एक छोटी सी
3: कहानी
1: सुना
3: देते। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो जो मैंने लिखी है, आशा है कि आपको पसंद आएगी। मैं आपके लिए आज एक कहानी लाया हूँ, स्वाद का खोया हुआ संसार। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ इंसानों के पास आँखें थीं, कान थे, नाक थी, लेकिन जीभ का स्वाद नहीं था। कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी बच्ची थी माया, सुबह वह गरम गरम नाश्ता करती थी, भाप उठती थी, सुगंध बहुत अच्छी आती थी, लेकिन जैसे ही मुँह में खाना जाता था सब कुछ एक जैसा, न मीठा, न खट्टा, न नमकीन, न कड़वा। उसकी माँ कभी नहीं पूछती थी कि खाना कैसा लगा, वह सिर्फ पूछती थी पेट भर गया। उस दुनिया में कोई मिठाई की ज़िद नहीं करता था, कोई सब्जी से मुँह नहीं बनाता था, कोई ये नहीं कहता था कि आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। रेस्टोरेंट थे लेकिन वहाँ लोग खाने के स्वाद के लिए नहीं बल्कि साथ बैठने के लिए जाते थे। कुकबुक नहीं थी, शेफ मशहूर नहीं थे, खाना सिर्फ शरीर को चलाने का ईंधन था। एक दिन पुरातत्वविदों को 2000 साल पुरानी एक पत्थर की पटिया मिली, उस पर एक जीभ बनी थी और उसके ऊपर 5 छोटे छोटे चिन्ह, नीचे लिखा था 5 उपहारों का सम्मान करो। वैज्ञानिक हैरान रह गए, जीभ और उपहार, कौन से उपहार? धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ शायद बहुत पुराने समय में इंसानों के पास एक ऐसी क्षमता थी जो अब खो चुकी है, जिससे भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता था, दिल भी भर जाता था। लोग परिवार की रेसिपी संभाल कर रखते थे, हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ एक स्वाद चखने जाते थे, जन्मदिन के केक का इंतज़ार करते थे, दादी के हाथ का खाना कभी नहीं भूलते थे। अब ज़रा अपनी दुनिया की ओर देखिए, जब माँ गरम रोटी पर घी लगाती है, जब पहली बारिश में पकौड़ों की खुशबू आती है, जब आम का पहला टुकड़ा मुंह में जाता है, जब चाय की पहली चुस्की मन को सुकून देती है, क्या हमने कभी सोचा कि ये सब कितना बड़ा उपहार है? शायद ईश्वर ने हमें स्वाद इसलिए नहीं दिया कि हम केवल अच्छा खाना खाएं, शायद इसलिए दिया कि हम याद बना सकें, रिश्ते जोड़ सकें और हर भोजन को एक अनुभव बना सकें। इसलिए आज अब अगली बार आप अपने परिवार के साथ भोजन करें तो एक पल रुककर सोचिए, अगर स्वाद कभी होता ही नहीं तो शायद हमें उसकी कीमत कभी पता ही ना चलती। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसमें सिर्फ ये दर्शाया गया है कि हमारे पास कितनी कितनी गिफ्ट्स हैं, भगवान ने हमारे लिए कितनी सारी गिफ्ट दी हुई हैं और हम उसका मूल्यांकन भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम रोज़मर्रा में उसे प्रयोग करके हम कभी कभी उसको पहचानते नहीं हैं, तो हमें ज़रूर आवश्यकता है कि हम इन सब चीज़ों को जानें और उन्हें अप्रिशिएट करें। तो शैलजा जी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे एक बात और याद आई।
3: हाँ।
1: कि जैसे कि हम लोग पहले पत्र लिखा करते थे
3: जी,
1: मम्मी पापा को, फ्रेंड्स हाँ। को, दोस्तों को
3: जी हाँ।
1: लेकिन अब तो ईमेल है, ईमेल भी छूट गया है, तो व्हाट्सएप है।
3: हाँ।
1: व्हाट्सएप अब फ़ोन से बात होती है, मैसेजेस करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों में हम, जैसा कि इस कहानी में दर्शाया गया टेस्ट के बारे में, हम खतों को भूल जाएंगे, पत्रों को भूल जाएंगे, लिखना भूल जाएंगे? कुछ ऐसा हो सकता है कि 2-4 जनरेशन के बाद लोग इसी तरह से बात करें कि ये लेटर क्या होता है, पत्र क्या होता है?
3: अगर आप यंग जनरेशन से बात कीजिए तो उन्हें यही लगेगा कि एरोग्राम क्या होता है, पोस्ट कार्ड क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो किसी ने मुझे रिसेंटली बताया था, मैंने उनसे कहा कि ज़रा लिख लीजिए इसको, कहने लगी लिख हमने तो बहुत दिनों से लिखा ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा प्रैक्टिस नहीं मुझे लिखने की। अब वो नहीं ना अंग्रेजी में लिख पाते हैं ना हिंदी में लिख पाते हैं, क्योंकि उनकी आदत है टाइप करने की।
1: लेकिन एक बात है शैलजा जी कि नीरज जी ने इतना सब कुछ लिखा है, तो वो खास बात ये कि प्रेम पत्र वो खास पत्र होता है।
3: बिल्कुल।
1: तो ये है कि नीरज जी ने ऐसे ऐसे संगीत दिए हैं, ऐसे ऐसी कविताएं लिखी हैं कि इस बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसी बात पर एक गीत सुना
3: उनका, बिल्कुल एक रोमांटिक उनका गीत सुनाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: चल रहा जी।
1: प्रदीप जी, अभी आप बात कर रहे थे कि आजकल लोगों को चिट्ठियां लिखने का या पेपर पेंसिल से लिखने की आदत बिल्कुल छूट गई है, और हम लोग जो थे, हमारा तो जीवन शुरू हुआ था पोस्ट कार्ड से। पहले 3 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, उसी पे हम चिट्ठियां लिखा करते थे। और हमारे स्कूल में भी हम लोगों को सिखाया जाता था कि आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे प्रिंसिपल को, कि सब चीज़ें वहाँ पे, कि छुट्टी लेने के लिए एक दिन की किस तरह से लिखेंगे, ये हम लोगों की प्रैक्टिस होती थी। तो मैं यही सोच रही थी कि फाड़ मत इनको कि जब अपनों से दिल भर जाएगा, फाड़ मत इनको कि जब अपनों से दिल भर जाएगा, हौसला देंगी तुझे ये चिट्ठियाँ रहने भी दे। प्रेम पत्र जो थी, हमने कहानियां लिखी है प्रेम पत्र के ऊपर, बिल्कुल। अब प्रेम पत्र भी लिखा है।
0: आपने बहुत अच्छा किया है। सबको प्रेम पत्र कभी कभी लिख देना चाहिए। क्यों
1: प्रेम पत्र?
2: एक आपने सुना होगा प्रदीप जी, मालूम पड़ा कि पोस्टमैन से शादी हो गई, इतनी चिट्ठियां आपने लिखी।
1: कि पोस्टमैन ही लाता है सारी अच्छी अच्छी खबरें। ये तो बहुत सारे श्रोताओं को याद होगा कि कितनी बेसब्री से पोस्टमैन का इंतजार होता था, और चिट्ठियां आने में कम से कम और अगर वो चिट्ठियां माता पिताजी को पसंद ना हो तो बीच में कॉन्फिस्केट भी कर दी जाती थी। एक पता नहीं कितनों को होगा, क्योंकि पिताजी माताजी अलर्ट रहते थे कि कोई गलत चिट्ठी आएगी तो सफाया कर दो बीच पे।
3: चिट्ठी आई है।
0: नहीं, बहुत अच्छा चल रहा जी, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रही हैं, हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं, हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं, हमारे दर्पण को आगे ले जा रही हैं
1: जी।
0: तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो शैलजा जी, और कोई एक खास बात बताइए नीरज जी की।
1: नीरज जी को हम लोगों ने बुलाया था 1995 में।
0: अच्छा।
1: सिडनी में, उस समय इतने में सिडनी में इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारी जो अटेंडेंस थी वो करीब 300 से ज़्यादा लोग आए थे उनको सुनने के लिए, जबकि आप आए थे उसमें। अच्छा, आप भी थे। हाँ, तो नीरज जी का एक तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उनकी संगीतमय आवाज़ है, बहुत ही सुंदर आवाज़ है, और उनका बोलने का तरीका और उनकी हर चीज़ उनकी जो थी नायाज थी। और लेकिन एक उनकी मज़ेदार बात थी कि उनको पहले तो हमने एक होटल में ठहराया था, उसके बाद हमारे घर आके रहे थे, कि होटल में कई सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे।
0: अच्छा।
1: उनका इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनके जहाँ उनका कमरा था उसमें राजीव मेरा ब्रदर जो था वो तैनात था उनको, उनकी सेवा करने के लिए। तो सेवा उनकी ऐसी थी, तो बाहर जो जर्नलिस्ट थे उन लोगों ने कहा कि बड़ी देर हो गई है, नीरज जी ने बुलाया नहीं अभी तक। तो हम कमरे में गए तो हमने देखा कि नीरज जी तो लेटे हुए थे पलंग पर, और राजीव बाबू जो थे लाल तेल लाए थे नीरज जी अलीगढ़ से। तो राजीव जो थे उनकी मालिश कर रहे थे। तो मैंने कहा राजीव ये क्या हो रहा है, कहने लगे अरे नहीं थोड़ी मालिश करवा ली थी। तो हमने कहा नीरज जी बाहर बैठे हुए जर्नलिस्ट सारे और आप यहाँ और हमने राजीव से कहा, हमने कहा तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और तुम मालिश किए जा रहे। कहने लगे नहीं, नीरज जी ने कहा पहले मालिश करो तब जाऊँगा।
0: अच्छा, तो आशीमा जी आपके पास कुछ और भी है क्या सुनाने के लिए, इसके पहले कि हम एक गीत सुनाएं? अच्छा, तो आशीमा जी आपके पास कुछ और भी है क्या सुनाने के लिए, इसके पहले कि हम एक गीत सुनाएं?

0: मेरी उम्र अमावस काली और तुम्हारी पूनम पूर्णिमा, मिल भी गई राशि अपनी तो बोलो लगन कहाँ पर होगा,
1: लगन कहाँ पर होगा।
2: वाह वाह वाह,
1: कितना सुंदर।
0: मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ, मेरा कुर्ता सिला दुखों ने,
1: बदनामी
0: ने काट निकाले, तुम जो आंचल ओढ़े उसमें नभ ने सब तारे डाले। मैं केवल पान ही पानी, तुम केवल मदिरा ही मदिरा, मिट भी गया भेद तन का तो मन का हवन कहाँ पर,
1: हवन कहाँ पर।
2: वाह वाह, क्या सुंदर, क्या विचार है।
0: बहुत ही सुंदर है। मैं जन्मा इसलिए कि थोड़ी उम्र आंसू की बढ़ जाए, तुम आई इस हेतु की मेहंदी रोज नए कंगन जड़वाए,
1: रोज नए कंगन जड़वाए।
0: तुम उदयाचल मैं अस्ताचल, तुम सुखांतिक मैं दुखांतिक, जुड़ भी गए अंक अपने तो रस अवतरण कहाँ पर होगा,
1: जुड़ भी गए अंक अपने तो रस अवतरण कहाँ पर होगा।
0: वाह
1: वाह, कितना सुंदर दिखा।
2: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अच्छा सुनिए, अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा एक सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर आ जाएंगे नीरज जी पर।
1: ठीक है।
2: लेकिन हमारी सरिता जी ने भारत से
1: जी
2: राम मंदिर के बारे में एक
1: राम मंदिर बहुत जरूरी
2: एक
1: है
2: वार्ता भेजी है, उसे सुन लेते हैं।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं सरिता सोनी रेडियो दर्पण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे करोड़ों भारतीयों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी और अनियमितताओं के मामले पर। सबसे पहले इसका थोड़ा सा इतिहास। अयोध्या का श्री राम मंदिर सदियों के संघर्ष, सामाजिक आंदोलन और लंबे कानूनी विवाद के बाद बना। वर्ष 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में नकद, सोना, चांदी और विदेशी मुद्रा सहित बड़ी मात्रा में दान आने लगा। अब सवाल है, विवाद शुरू कैसे हुआ? मीडिया रिपोर्ट और जांच एजेंसियों के अनुसार मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती के दौरान कुछ कर्मचारियों पर नकदी और कीमती वस्तुएं निकालने के आरोप लगे। शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज, सुरक्षा व्यवस्था और दान गिनने की प्रक्रिया में कई गंभीर कमियां सामने आने का दावा किया गया। आरोप है कि लगभग 45 दिनों की अवधि में दर्जनों संदिग्ध घटनाएं हुई जिनमें कर्मचारियों को कथित रूप से नकदी अपने कपड़ों और अन्य स्थानों पर छिपाते हुए देखा गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल जिसे SIT कहते हैं का गठन किया। अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से नकदी, सोना, चांदी और विदेशी मुद्रा बरामद भी होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि ये पूरा मामला अभी अदालत और जांच की प्रक्रिया में है, इसलिए अंतिम निर्णय आना बाकी है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दान की सुरक्षा, कर्मचारियों की तलाशी, सीसीटीवी निगरानी और निगरानी व्यवस्था में कई प्रक्रियात्मक कमियां थी। इन्हीं कारणों से मंदिर ट्रस्ट ने प्रशासनिक बदलाव किए और भविष्य में अधिक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनैतिक नहीं बल्कि जन आस्था और जवाबदेही है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, इसलिए यह आवश्यक है कि हर धार्मिक संस्था, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, दान और सार्वजनिक धन के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखे। यहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि आस्था तभी मजबूत होती है जब उसके साथ जवाबदेही और विश्वास भी जुड़ा हो। हम सभी ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जांच अब निष्पक्ष होगी, पारदर्शी और शीघ्र पूरी हो ताकि सच्चाई सामने आए, दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले और निर्दोषों के साथ न्याय हो। इसी संदेश के साथ आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: आप सभी का दिन शुभ हो।
1: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
2: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
3: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। दोस्तों, आज हमारे साथ यतीन्द्र जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, हालांकि ये चुपचाप बैठे हुए हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि कहाँ से क्या करें, लेकिन हम इनकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हमसे हम इनके जो कोर सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे।
4: जी, अकाउंटेंट होने के नाते मैं एक चीज़ में कहना चाहता हूँ प्रदीप जी, कि कभी मैंने सोचा था कि ज़िंदगी मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। वो मेरे लिए इतना बड़ा हो गया है, करीब 3-4 हफ्ते हो गए। एक हमारे नए क्लाइंट हैं जिनका, वो हमारे ऑफिस में आए थे
5: जी हाँ,
4: तो उन्होंने कहा कि मैंने ना स्लीपिंग की जो मशीन होती है वो लगाना बंद कर दिया,
5: स्लीप अपनिया की।
4: हाँ, स्लीप अपनिया की। तो मैंने, बड़ी अच्छी बात, वो तो खुशी की बात है। फिर थोड़ा पॉज करके उन्होंने मुझे बोला कि ये आपकी वजह से हुआ।
5: अच्छा।
4: मैंने कहा कि वो भी इंडियन है, होटलियर है, नाम नहीं ले सकता किसी वजह से, तो वहाँ प्राइवेसी वजह से राधर। तो मैंने कहा कि मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेट मी क्लेरिफाई दैट पार्ट। ना कह ले कि ये सच है कि जब से आपने हमारा काम संभाला है तो इतना बड़ा, मैंने
5: कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
4: मैं शायद $1 करोड़ रख दो, ये रख दो, ये इतना बहुत बड़ा कंपनी की कितना हम जीवन को अफेक्ट करते हैं। इसलिए अभी हमने सोचा है कि हम कुछ न कुछ ऐसे अपने श्रोताओं को दो जिससे कि उनके जीवन में जो भी एक फाइनेंशियल हेल्थ जिसको कहते हैं अच्छा हो। तो एक कंसेप्ट होता है SMSF, सेल्फ मैनेज सुपर फंड, जिसका मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैं उसका ऑडिटर भी हूँ। तो वेल्थ क्रिएशन के जो पॉइंट हैं सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी अब लिमिटेड होते चले जा रहे हैं। लेकिन SMSF को हम ऐसे बोलते हैं कि लीगल टैक्स हेवन विद इन ऑस्ट्रेलिया, लीगल टैक्स हेवन विद इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको मालूम है कैसे इसका उपयोग करा जाए। तो प्रदीप जी, एक चेंज हुआ है अभी इस बजट में कि उन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन नहीं ले सकते हो। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा एक वो था, इंसेंटिव था, वो नहीं हो सकता। लेकिन एक अलाउ है जो एक रेगुलेशन 13.22C, रेगुलेशन 13.22C के अंतर्गत एक यूनिट ट्रस्ट आप बना सकते हो, जिससे कि आप जो दूसरी फंडिंग, जैसे कि एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 1 मिलियन का एक प्रॉपर्टी है, सुपर फंड के पास में केवल 5 लाख है, तो 5 लाख कहाँ से आए? तो अगर आप वो यूनिट ट्रस्ट बनाए तो उस यूनिट ट्रस्ट में आप अपने और जो पैसा वो डाल सकते हो। अच्छा। और तो जैसे फैमिली ट्रस्ट है, आपकी कंपनी है, उसे डाल सकते हो। तो बगैर लोन लिए आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। तो एक टेक्निकल थोड़ा सा मुझे मालूम है, लेकिन आप अपने अकाउंटेंट को अगर आप बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे मैंने सुना है दर्पण रेडियो पे कि 13.22C का एक यूनिट ट्रस्ट बनता है, स्पेशल यूनिट ट्रस्ट होता है, जिसके थ्रू आप ये खरीद सकते हो। तो
3: अच्छा, ये बताइए यतीन्द्र जी कि हमने सेल्फ मैनेज सुपर फंड बना लिया, उसमें हमारा सुपर तो जा ही रहा है, अगर हम उसमें अपनी सैलरी भी डाल सकते हैं क्या?
4: हाँ, तो एक सैलरी तो दो किस्म के कंट्रीब्यूशन होते हैं। अच्छा। एक कंसेशनल कंट्रीब्यूशन होता है जिसकी लिमिट अब इस साल से 32,000 हो गई है। अच्छा। और तो कंसेशनल का मतलब होता है कि आपको टैक्स का एडवांटेज मिल रहा है। अच्छा। तो आप अपनी सैलरी को कम करके, तो आप बेसिकली 15% केवल टैक्स पे कर रहे हो। और एक होता है नॉन कंसेशनल कंट्रीब्यूशन, जो आपका टैक्स होता है। तो कई तरीके से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो आपका प्रश्न अगर ये है कि हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सुपर फंड में, आंसर यस, सैलरी सेक्रीफाइस करके कर सकते हैं, आंसर यस।
3: अच्छा, ठीक है। तो सैलरी सेक्रीफाइस करके तो कर ही सकते हैं, और टैक्स जो हमारा मनी है उससे भी हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
4: जी, बिल्कुल सही। इस एडवाइस से आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि आप अपने अकाउंटेंट से बात करिएगा और दे विल हेल्प यू टू यू नो टू रीजिग योर थिंग।
3: तो यतेंद्र जी, आपने इतनी अच्छी बात बताई, पैसे की बात तो बहुत अच्छी होती है, और आपने जो अपने एथिक्स की बात बताई वो भी बहुत अच्छी है, और हमें इस बात का गर्व है कि आप भी हमारे साथ इस दर्पण के मुहिम में जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ हम ऐसा करते हैं कि हम एक सुंदर सा नीरज जी का गीत सुना देते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों का स्वागत
5: अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
5: सॉरी।